0: advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410 that's 8574 8410 साउथ

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन

नजर कहीं कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गज।

0: फेस्टिव फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
1: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
2: Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Trika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 p.m. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo, only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai, on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit SAFUK.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।
6: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाकरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर।
6: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
8: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: Good morning. स्वागत है, स्वागत है संगीत प्रेमियों का और हंसी के ठहाकों के कदरदानों का, दिल वालों का, मस्तों का। माय नेम इज रवि शर्मा और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर मैं पहुंच गया हूं स्टूडियो में। बहनों भाइयों, आप सब की ओर से शुक्रिया अदा कर देता हूं। काजल का शिल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। बुधवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 16 तारीख हो गई आज। वक्त सरकता जा रहा है, दिल धड़कता जा रहा है, ये वक्त नहीं गुजर रहा, जिंदगी गुजर रही है साहब। जन्मदिन मनाते लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ रही है। याद रखिए, उम्र कभी नहीं बढ़ती, उम्र घटती है। यानी जितनी लेके आए हैं उसमें से जो साल गुजर गए वो घट गए, कम रह गए। इसलिए एक एक लम्हा जीने का है, ढोने का नहीं है। ये जिंदगी बारंबार नहीं, दुनिया के मजे लूटेंगे हम, खेले कूदे, हंसेंगे और हंसाएंगे, बस और कोई बात ना पूछेंगे हम। तैयार हो जाइए, शुरू होता है मनोरंजन प्रोग्राम विद रवि शर्मा।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Across Greater Manchester on 1377, 963 AM and DAB. And now also in Bradford and Leeds, this is Leica Radio.
2: Welcome, friends, to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
3: No!
2: Samba?
3: No!
2: Rumba?
3: No!
2: Samba?
3: No!
2: Tequila?
3: No!
2: Tango?
3: No!

0: दिल तो दिल ही है भाई, अब वो फेफड़ा तो हो नहीं सकता। नहीं, दिल तो दिल है, अब आप कह के भाई वो लीवर बन जाए, वो किडनी बन जाए, वो तो नहीं हो सकता। बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हम आगाज कर चुके हैं मनोरंजन प्रोग्राम का। और बहनों भाइयों, ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड और लाइका रेडियो मिडलैंड्स के जो है कार्यक्रम आप तक पहुंच रहे हैं। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक हंसी के ठहाके, कुछ चटपटे गीत, कुछ अटपटी बातें, ये सब जुटा करके भाई मैं हाजिर रहूंगा यहाँ स्टूडियो में और आप मेरा साथ निभाएंगे। राइट, मौसम खूबसूरत है, बड़ा ही हसीन मुहूर्त है और ऐसे में आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोताओं की जरूरत है कि आप साथ बने रहें। पहले आपको पाउंड का रेट बताएंगे और उसके बाद भाई सुनवाएंगे कुछ ये गीत। 10:30 बजे का करीब आज की जो खास खास खबरें हैं वो हम लेकर के आएंगे और 11 बजे की खबरों के बाद आप सुन पाएंगे थॉट फॉर द डे यानी चिंतन। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
1: Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई आपको आज का रेट। पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत तो इनकी सेवाओं का इस्तेमाल कीजिए। आज का रेट है फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.9 रुपीज, 128 रुपए और 90 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीस अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com. Leica Radio.
2: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. 4 stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 p.m. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: It's back and it's bigger.
2: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
5: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
2: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
5: Exclusive charity partner, Go Dharmic. London, get ready for an unforgettable night.
4: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
5: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
4: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
5: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
4: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
5: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
8: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call Peaches 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner Leica Radio.
10: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today. Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HartyHanks.com. Harty Hanks. Outdated is out of business. Visit HartyHanks.com today.
11: आपका नया स्टेशन Leica Radio Ghazals बहुत जल्द आ रहा है.
12: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
14: Om Mangal Buddh Veer Shukr Shani Itwar. 7 dinon mein hansna chahiye kam se kam 700 baar.
0: 700 बार हंसना चाहिए लेकिन 1400 बार हंसाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. लेकिन साहब ये हंसी मजाक लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टरों के साथ मत करना, वहां गंभीर मामला होता है. आप उन्हें हंसाने की कोशिश करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि हंसी हंसी में हसनगढ़ बस जाए. देखिए साहब, एक दोस्त हमारे गए डॉक्टर के पास. डॉक्टर ने पूछा बताइए क्या तकलीफ है, तो कहने लगा सर आंखें बंद करता हूं तो कुछ दिखाई नहीं देता. खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती. डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं समझ गया. कहता और बताओ. कहते नहीं रहने दो, बस मैं समझ गया. अब डॉक्टर ने भाई उसको 4 गोलियां दी और बिल थमा दिया. कहा ये लो टेबलेट्स, ठीक हो जाओगे. बस क्या करना, 2 गोली रात को सोने के बाद और 2 गोलियां सुबह उठने से पहले खा लेना. कैसी बीमारी है साहब, पैसे देके गोलियां लेके चला गया. इसको कहते हैं गोली देना.

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और बहन भाइयों, मैं घड़ी की ओर देख रहा हूँ. समय हो चला है समाचारों का. और भाई, समाचारों में एक बात बड़ी चर्चित हो रही है. लोग कह रहे हैं कि ब्रिटेन जो दुनिया भर में फूट डालो राज करो के लिए प्रसिद्ध था, अब कहते हैं कि उसने कई देशों के टुकड़े कर दिए, भारत पाकिस्तान अलग कर दिए. इसी तरह से और भी कहेंगे, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या ईस्ट या और वेस्ट, भाई इस तरह से बांट दी. कहते हैं आज खुद वो बंटवारे के कगार पर जा पहुंचा है. ऐसी बात है. हाँ, चर्चा हो रही है कि ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के जो दूसरे भाई राज्य हैं, जैसे स्कॉटलैंड, वेल्स कहते हैं, वो अलगाव की बातें कर रहे हैं. और एंडी बर्नहम जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अगर वो चाहेंगे तो हम उन्हें रेफरेंडम कराने का मौका दे सकते हैं. जनमत संग्रह एक बार पहले हुआ था, तो उस समय तो भाई लोगों ने बहुत मामूली मेजोरिटी से ब्रिटेन में रहने का फैसला किया था, लेकिन अब अलगाव की बातें चल रही हैं. इसके अलावा और क्या कुछ है आज के समाचारों में, तो आइए देखते हैं आज की खास खबरें.
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। ईरान पर हमले की अमेरिका ने अब तक क्या कीमत चुकाई है, वही एक रिपोर्ट आई है और उससे पता चलता है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के एक हवाई जहाज को मार गिराया है। भारत से आने वाली खबरों में गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन मामले में अभियुक्त कल्याण बैंसला को हरियाणा की एक लोकल अदालत ने दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। हिट एंड रन के अपराधी को दो दिन की पुलिस कस्टडी। वकील ललित बिंदल ने कहा कि अदालत ने दो दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की है। हमने इसका विरोध करते हुए कहा कि पुलिस के पास पहले ही पर्याप्त समय था, हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वो मेन खबर हूती विद्रोहियों का दावा, सऊदी अरब का एक F-15 फाइटर जेट मार गिराया है हमने। आज उन्होंने दावा किया कि एक सऊदी लड़ाकू हवाई जहाज को हमने गिराया है। उन्होंने ये भी कहा कि विमान को निशाना बनाने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित घर में बनाए हथियार का इस्तेमाल किया गया है। हूती लड़ाकों के स्पोक्स पर्सन याया सरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यमनी हथियारबंद बलों ने मारीब प्रांत के हवाई इलाके में शत्रुतापूर्ण अभियान चला रहे, दुश्मनी निभा रहे एक सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू हवाई जहाज उन्होंने मार गिराया है, इसमें कामयाबी हासिल की है। याया सरी ने कहा कि लड़ाकू हवाई जहाज को स्वदेशी निर्मित यानी स्वयं अपने यहां बनाए हुए हवा से मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल करके निशाना बनाया गया है। भारत से आने वाली खबरों में नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक्टिंग चीफ को विदेश मंत्रालय में फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया गया है। भारत ने समुद्र में पाकिस्तानी नेवी की यूनिट के नामंजूर और गैर पेशेवर रवैयों को लेकर के कड़ा विरोध दर्ज कराया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इस रवैये की वजह से इंडियन नेवी की एक यूनिट के साथ उसकी टक्कर हो गई, एक जहाज की। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कल मंगलवार की शाम को उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी का एक जहाज रेगुलर निगरानी पर मौजूद भारतीय नेवी के एक युद्धपोत यानी लड़ाकू जहाज पानी के जहाज की ओर तेजी से आया और जिससे दोनों में टक्कर हो गई। फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक ये घटना इंटरनेशनल इलाके में पानी में जो इंटरनेशनल एरिया था उसमें हुई और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज का आचरण उसका बिहेवियर अप्रैल 1991 में फौजी अभ्यास युद्ध अभ्यास यानी एक्सरसाइज और सैनिकों की आवाजाही के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 10 का सीधा उल्लंघन है, खिलाफ वर्जी थी। भारत से आने वाली अन्य खबरों में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में इल्जाम लगाया है कि मोदी सरकार अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने यूपीआई पर जीरो एमडीआर खत्म करने और शुल्क लगाने की अमेरिकी मांग मान ली है। पाकिस्तान से आने वाली खबरों में शहबाज शरीफ ने मक्का पर ड्रोन हमले की कोशिश को लेकर के उसकी कड़ी निंदा की है। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मैं मक्का अल मुकर्रमा के पवित्र स्थल पर जो ये घृणित हमला हुआ, जघन्य ड्रोन हमले की जो कोशिश हुई है, इसकी कड़े अल्फाज में निंदा करता हूँ। पाकिस्तान के लोग इस निंदनीय घटना से दुखी और चिंतित हैं। ये माफी के लायक नहीं है और इससे हमें बड़ा दुख हुआ है और इस दुख को व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द काफी नहीं है। भाई जो मक्का समझौता हुआ था उसके अनुसार तो लोग कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर यहाँ तो कड़ी निंदा से काम चलाया जा रहा है। भाई उन्होंने लिखा कि हम रॉयल सऊदी हथियारबंद बलों की जो सतर्कता है, साहस है, जो पेशेवर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको सलाम करते हैं जिन्होंने तेजी और बहादुरी के साथ कार्रवाई की। मैं एक बार फिर सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और भविष्य में तनाव बढ़ने की स्थिति से पीछे हटने की जो है वो मांग करता हूं, आह्वान करता हूं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा इलाका पहले ही संघर्ष के कारण बहुत पीड़ित हो चुका है, बहुत नुकसान उठा चुका है। संवाद यानी बातचीत और डिप्लोमेसी ही शांति की दिशा में एकमात्र परमानेंट रास्ता है। भारत से आने वाली खबरों में कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार का यूपीआई लेन देन पर टैक्स लगाना लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने लिखा कि कीमतें बढ़ने से डिजिटल और कैशलेस भारत का सपना बिखर जाएगा और लोगों की पॉकेट पर बोझ बढ़ेगा। फुटबॉल से जुड़ी एक खबर, अर्जेंटीना ने अक्टूबर में बेनिन के खिलाफ होने वाले मैच के लिए अपनी टीम में फॉर्मर कैप्टन और स्टार फुटबॉलर रहे लियोनेल मेसी को शामिल किया है। भाई मेसी तो रिटायरमेंट ले चुके थे पर कहते हैं नहीं, इस मैच में खेलेंगे, ये एक फ्रेंडली मैच होगा और अर्जेंटीना अपने फॉरवर्ड खिलाड़ी मेसी को इस मैच से इंटरनेशनल फुटबॉल से विदाई देगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर 16 और 17 सितंबर को यानी आज और कल भूटान के दौरे पर जाएंगे। वो विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री एच ए लोनपो डी एन ढुंगेल के इनविटेशन पर भूटान की सरकारी यात्रा कर रहे हैं। वो भूटान के राजा और वहां के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान जा रहे हैं। सऊदी अरब का कहना है कि उसने यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से दागे गए एक ड्रोन हमले को मक्का के प्रतिबंधित हवाई इलाके से पहले ही नाकाम कर दिया है। सऊदी अरब के कुछ हिस्सों पर हूती हथियारबंद गुटों के हमलों में बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने यह कार्रवाई की है। मक्का में उन्होंने पहली बार जुलाई 2017 में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। इसी बीच कल मंगलवार को मक्का, जेदा और तैफ में थोड़े वक्त के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था और सऊदी सिविल डिफेंस अफसरों ने बाद में घोषणा की कि खतरा टल गया है। ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तस्वीरें खास तौर पर सीबीएस समाचार नेटवर्क को ही उपलब्ध कराई गई हैं और इन तस्वीरों में अमेरिकी बोइंग A3 सेंट्री हवाई जहाज को जो हमले में हुआ नुकसान है वो साफ देखा जा सकता है। हवाई जहाज का टूटे हुए हिस्से जो है वो टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है। तस्वीर में मौजूद अमेरिकी फौजी कर्मियों ने सीबीएस को शर्त पर भेजी थी ये तस्वीरें कि पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन अब वो पब्लिक हो गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने शिपिंग सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि लाल सागर पर बने सऊदी अरब के यानबू पोर्ट पर तेल की लैंडिंग रोक दी गई है। और इन खबरों के बाद कल मंगलवार को तेल की कीमतों में लगभग $3 प्रति बैरल की और बढ़ोतरी हो गई। समाचार भाई समाप्त करने पड़ रहे हैं क्योंकि समय की अवधि समाप्त होगी, लेकिन जाते जाते आपको आखिरी खबर ये भी बता दें कि T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला जीत लिया है। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। समाचार अब समाप्त होते हैं।
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: अब लौट आइए संगीत की ओर, एंजॉय कीजिए म्यूजिक। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं गोल्डन गीतों का प्रोग्राम मनोरंजन।

0: children aged 5 to 12, just £15. And under 5s go free.
1: Book now at DiwaliGala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship, call Rakesh on 07436 594 323.
0: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio partner, Lyco Radio.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: It's December. Thand ko bolo, goodbye.
0: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine or 8 amazing Caribbean islands. Aapka intezaar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person. Twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
4: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाकरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
6: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Sangeet Sadhana.
8: Sangeet Atma Ki Aawaz.
9: Humne koi bhi reality shows mein itne sare musicians dekha nahi.
10: और जहां संगीत के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए
11: वो सिर्फ एक मंच नहीं वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान
12: सारेगामा पा शुरू हो रहा है 19 सितंबर से शनिवार और रविवार 7:30 बजे यूके आपके अपने जी टीवी एचडी और जी5 ऐप पर
13: ये है लाइका गोल्ड

स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये कार्यक्रम आप रवि शर्मा के साथ सुन रहे हैं, दैट्स माय नेम, और मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं। और बहन भाइयों, ये समय है चिंतन का, विचार करने का। मैं सुनवाता हूं आपको थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और भाई, आज के विचार में हमें आलेख मिला है भारत में मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक शहर इंदौर से श्रीमती पुष्पा जैन का भेजा आलेख। माननीय मिसेस जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत के हृदय में और उस सांस्कृतिक नगर में हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। कल के लिए था आपका चिंतन, पर हम आज शामिल कर रहे हैं। कल पर्युषण का पर्व था और जैन समुदाय के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार, पर आज भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। ये जानकारी और ये संदेश, आपने इशारा किया है कि एक गीत आपने कुछ दिन पहले बजाया था मन्ना डे की आवाज में, उपकार फिल्म से, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इस गीत के बारे में पिक्चराइज्ड प्राण साहब ने मनोज कुमार को, एक बच्चे के रूप में जब रोल कर रहा था कोई बालक उनका, उसे समझाते हुए कहा था। जब उसने पूछा कि बाबा आप दिन में तो कहते हैं सबसे प्यार करो, अच्छे काम करो, और शाम को कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो प्राण ने हंसकर कहा था, दिन में वो कहता हूं जो होना चाहिए, शाम को उस कड़वी सच्चाई को बखान करता हूं जो हो रहा है। जो होना चाहिए और जो हो रहा है, दोनों में बड़ा फर्क है इस कलयुग के दौर में। इस संदर्भ में एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना आपने लिख के भेजी है, और बहनों भाइयों, ये सचमुच है, सच्ची घटना है, क्योंकि हमने जांच की, सत्य बात है। ये मुंबई के घाटकोपर इलाके की है, वहां घाटकोपर ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को वहां एमएलए कहा जाता है, जैसे केंद्र में दिल्ली में पार्लियामेंट के मेंबर को एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, तो एमएलए राज्य में जो असेंबली होती है उसके मेंबर को एमएलए कहते हैं, विधायक। और ये घटना अभी इसी महीने चर्चा में आई है। पराग शाह, ये वो एमएलए हैं जिनके बारे में ये चर्चा है, करोड़पति हैं, लेकिन एक दिन के लिए वो भिखारी बने, बिल्कुल भिखारियों जैसा भेस, फटे कपड़े, बिखरे बाल और चेहरा ऐसा कि कोई ना पहचान सके। मगर क्यों ऐसा किया उन्होंने? वेल, आपको बता दें, पराग शाह विधानसभा चुनावों के हल्फनामे में जहां अपनी संपत्ति बतानी होती है ना इलेक्शन लड़ने से पहले, उन्होंने अपनी संपत्ति बताई 3,383 करोड़, इससे भी ज्यादा उनकी संपत्ति आज है, क्योंकि वो रियल इस्टेट कारोबार से जुड़े हैं। और विधायक बनने से पहले वो बीएमसी के पार्षद भी रह चुके हैं। अब जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान उनके गुरु नम्र मुनि महाराज ने उन्हें सलाह दी कि भाई वो बहुत ठाट बाट से रहते हैं, वो अपना वैभव, अपनी सिक्योरिटी, अपना आराम छोड़कर एक दिन सामान्य भिक्षुक का जीवन जीकर देखें, पता लगे दुनिया में लोग कैसे जी रहे हैं, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो एक दिन एक भिक्षुक का जीवन जिए। भाई शाह ने गुरुजी की बात मान ली और अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया, गंदे कपड़े, बढ़े हुए बाल, दाढ़ी और सामान्य एकदम भिखारी जैसा रूप बनाकर बंबई की सड़कों पर निकल पड़े, मुंबई की सड़कों पर। यह सच घटना है, फिर बता दूं, अधिकांश लोगों ने पहचान ही नहीं पाए, वो लोगों से भीख मांग रहे थे, तो साहब लोगों ने किस तरह दुत्कारा उन्हें। एक होटल के सामने गए तो उसने कहा कि हमारे सामने बैठो, बुरा असर पड़ता है क्लाइंट्स पर।
बड़ा होटल था। वो अपनी कंपनी के बाहर गए तो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उन्हें वहां से भगा दिया। ए, आगे चलो, यहां मत बैठो, यहां मत रुको। आगे बढ़ गए। बड़ा कटु अनुभव वो बटोर रहे थे आज। एक मामूली हलवाई की दुकान के बाहर गए, भीख मांगी तो वो समोसे तल रहा था, उसने एक समोसा दे दिया दया करके। लेकिन लोग किस तरह उनकी तरफ देख रहे थे, क्या बर्ताव कर रहे थे, वो सब सहते जा रहे थे और एक अनुभव जमा कर रहे थे। उनका कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में यानी नॉर्मल हालात में उनसे मिलने के लिए लोग कतार में खड़े होते थे, लाइन लगती थी, एमएलए थे। लेकिन जब वो खुद लोगों के बीच एक मामूली भिखारी बनकर पहुंचे तो व्यवहार अलग था। उनके अनुसार इससे उन्हें सामाजिक हैसियत और असल जिंदगी के फर्क को समझने का मौका मिल रहा था। अब इसका जैन दर्शन से क्या संबंध है सुनिए। इस प्रयोग को त्याग, अपरिग्रह और आत्मचिंतन की जैन परंपरा से जोड़ा गया है। केवल भिखारी का वेश धारण करना नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए सुविधाओं से और प्रतिष्ठा से बाहर निकलकर दूसरे आम व्यक्तियों के जीवन को जीना महसूस करना था। और सब सच्चाई सामने आ गई, कलयुग का असली रूप सामने प्रकट हो गया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास करोड़ों की जायदाद है, जिसके पास बहुत बड़ा पद है, इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है, लोग जिससे मिलने का इंतजार करते हैं, वही एक दिन फटे पुराने कपड़े पहनकर मुंबई की सड़कों पर निकला तो किस तरह से दुत्कारा गया। फिर बता दूं, ये कहानी मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पराग शाह से जुड़ी है और उन्होंने जैन मुनि नम्र मुनि महाराज की प्रेरणा से एक दिन के लिए भिखारी का ये जीवन अनुभव किया। बहनों भाइयों, हजारों यार होते हैं जब जर पास होता है, धन पास होता है, प्रतिष्ठा पास होती है, मगर टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। दिन में हम वो कहते हैं, चिंतन में हम वो कहते हैं जो होना चाहिए, पर कभी कभी वही महसूस वो भी करते हैं जो हो रहा है। ये कलयुग है, सिर्फ प्रभु पर भरोसा किया जा सकता है। अगर हमारा अपना कोई है ना सबसे नजदीकी रिश्तेदार, तो वो ईश्वर है, वही हो सकता है।

0: आज का चिंतन, आज का विचार। भाई हमारे श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं, कहती आंखें खोलने वाला था चिंतन आपका। चिंतन कहते हैं हमें अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता है, लेकिन कभी कभी सच्चाई बता करके आप हमें जागरूक भी बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच मधु, आपका संदेश है। सुनीता जी, महेंद्र पटेल, रागनी, जगदीश, हेना, विजय, फतेह पटेल, अनिल सोनी वियाना में, रानी सलाव में, और नीला चौधरी जी हमारी रेगुलर लिसनर। आप सबके संदेश मिल रहे हैं उल्लास टोरंटो में, पमी सलाव में, राजेंद्र राज जी थैंक यू वेरी मच, भरत गंगाराम, देशराज बैसन साहब, हंसा वोरा, हेतल सोलंकी, जस्सू, मीनाल त्रिवेदी, और भाई आप सब ने चिंतन के विषय में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे मैं पास ऑन कर दूंगा श्रीमती पुष्पा जैन जी को, इंदौर भारत से, मध्य प्रदेश में है इंदौर शहर, बहुत ही कल्चरल सिटी। भाई वहां से श्रीमती पुष्पा जैन ने आज के चिंतन के लिए आलेख भिजवाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गीत आपने सुनवाया दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म गोपी, रफी साहब की आवाज थी। आज का चिंतन, आज का विचार भाई जैन मुनि जी द्वारा प्रेरित और एक एमएलए के जीवन से जुड़ा था मुंबई के, तो हमारे श्रोताओं को पसंद आया, ये जानकर अच्छा लगा। याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे के खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. एक पाउंड के बदले आज 128.90 रुपए दे रहे हैं। नोट कर लीजिए आज का रेट 128.9 इंडियन रुपीस फॉर वन पाउंड। एंड भाई यू कैन ट्रांसफर मनी वाया ब्रांच, किसी भी SBI UK की ब्रांच में जाकर, ऑनलाइन या फिर थ्रू योनो SBI UK मोबाइल ऐप आप पैसे भिजवा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: This is Leica Radio. This part of the show is sponsored by Oh Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: लिस्ट अप नवरात्रि की धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th टू 20th अक्टूबर लाइव फ्रॉम इंडिया। गरबा, डांडिया, म्यूजिक एंड फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड स्कूल। लिस्ट अप टिकट्स जस्ट 5 pounds से स्टार्ट। बुक योर टिकट्स नाउ ऑन टिकट सोर्स और कॉल बीजे 07957477330। रेडियो पार्टनर लाइक अ रेडियो।
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846
7: Birmingham. Get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Dirty Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Dirty Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Laika Radio.
8: Khakra Crunch Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
9: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
8: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
10: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
11: Dil ne ye kaha hai dil se bol chudiya.
10: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
13: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-180. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
14: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
12: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. On this week's Leica Extra podcast, we talk myths and misconceptions about raising debts, where Kush speaks to Meenal.
15: A right kind of leverage on your balance sheet is actually good. You cannot grow your business without having a good debt. Debt is not an enemy of your business.
12: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
16: Leica Radio.
12: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
17: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: the zoo.
1: I love you too. I love you three. दोनों झूठ बोल रहे थे भाई. बैक टू बैक संगीत हमने आपको सुनवाया. आज झूठ सच सब मिलकर के एंटरटेनमेंट बन जाता है. राइट, दिस इज लाइका रेडियो नेटवर्क. आप सुन रहे हैं रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम. और इसी बीच भाई हमारे पास कुछ और संदेश आकर के चिपक गए हैं हमारे स्क्रीन पर, उनका भी जिक्र करेंगे. लेकिन एक अरुणा जी आपका मैसेज मिला है. अरुणा जी, हाँ अरुणा जी, और कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम द थॉट ऑफ द डे. वो हर रोज होता है, हर चिंतन कुछ न कुछ हमें सबक सिखाता है. हाँ, और निर्मला जी आपका मैसेज मिला. आज आपके घर में किसका जन्मदिन है? शी सेज दैट माई ग्रैंड डॉटर सोनम इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे बट एट द मोमेंट शी इज इन स्कूल. तो फिर स्कूल में जाके मनाइए भाई बर्थडे. तो उन तक हम मेरा आशीर्वाद, मेरा पैगाम पहुंचाइएगा. सोनम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपके नाना नानी, आपके भाई जोरावर और करण की ओर से, और हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क परिवार की ओर से भी.
2: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.
1: और एक और संदेश हमारे स्क्रीन पर आया है. ये है संदेश मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से. और भाई लाइका रेडियो नेटवर्क के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है. जब आप खुद बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होती है, आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब उसी पर डिपेंड करते हैं. इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैंस लेकर आए हैं कि अप टाइम प्रॉमिस आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेक फायदों का एक पैकेज. जैसे 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, अच्छा ज्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और बहुत कुछ. यानी आपकी वैन के खराब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए सब एक ही जगह. तो मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ हैं. आज ही मर्सिडीज बेंज वैन्स सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में और जानें. टर्म्स एंड कंडीशंस लागू.

0: सचमुच दे देगी जान भाई, कोई भरोसा नहीं है इसका, क्योंकि ये पहले भी कई बार जान दे चुकी है। बता दें आजकल जान तो लोग देते लेते रहते हैं, ऐसी कॉमन चीज बन गई है। वेल आई वाज टेलिंग यू अबाउट क्रिकेट, तो भाई जो भारत और अफगानिस्तान के बीच इस सीरीज का तीसरा T20 मैच है वो कल खेला जाएगा दिल्ली में, और स्कोर के आंकड़ों से हम आपको जोड़े रखेंगे। वैसे सीरीज भारत के पक्ष में जा चुकी है क्योंकि वो 2-0 से इसमें लीड कर रहे हैं, और जियो स्टार पर आप इसे देख सकते हैं।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर
1: Advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can

0: रंग भर से भीगे चुनर वाली, यानी बगैर चुनरी वाली जो वो सूखी रह गई क्या? सिर्फ चुनरी वाली भीगी है, छतरी वाली भी भीगी है। ये भाई कंप्यूटर को नहीं पता था कि आज होली नहीं है, ये तो भाई किसी भी त्योहार का गीत किसी भी समय लगा सकता है, लेकिन हाँ जब रंग बरसेंगे तो भाई होली जैसा माहौल जरूर हो जाएगा, और रंग बरसेंगे तो जीवन में भी एक रंगीन अनुभूति होगी। राइट, बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवाए, और मुझे यकीन है कि भाई पहला गीत तो प्रेरणा था, हमारे चिंतन का एक हिस्सा बन सकता था, पहले बना है, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, देखना एक दिन पृथ्वी गोल है, वापस घर पहुंच जाओगे। धरती गोल है भाई, तो चलते चलो सुबह शाम, एक न एक दिन वापस घर आ जाओगे। और दूसरा गीत अभी आपने सुना, रंग बरसे भीगे चुनर वाले, अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाजों में, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म सिलसिला। और बहनों भाइयों, ये कार्यक्रम का तीसरा घंटा शुरू हो चुका है बैक टू बैक संगीत से। अब एक बार फिर से आपको रेट्स बता दें, अगर आप SBI UK के थ्रू पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत, तो आज का रेट
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that there are attractive rates at the moment. If you want to send money to India, £1 could get you 128.9 rupees, 128 rupees aur 90 paise ka rate chal raha hai. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Threeka, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: ना पहचाने मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। ओ दिल पर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे। और दिल पर सोनिए तेरे हैं हम तेरे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: सुन लिया आपने शशि कपूर साहब की फिल्म हसीना मान जाएगी का गीत हमने आपको सुनवाया भाई। He is the artist of the week this week और बहुत सारे गाने उनकी फिल्मों के आपको सुनने को मिलेंगे इस हफ्ते। अब साहब आज क्योंकि बुधवार है और बुधवार के दिन कुछ ऐसा सुनवाने का हमारा इकरार है।
4: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
3: पर कैसे हंसे साहब, इतना गंभीर माहौल, हॉस्पिटल में बेड पर पत्नी उनकी लेटी हुई है, डॉक्टर खड़ा है, सीरियसली कह रहा है। देखिए साहब, आपकी बीवी के बारे में दो खबरें हैं, एक बैड न्यूज है, एक गुड न्यूज है। बोलिए पहले कौन सी बताऊं? खैर सर बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। उसने कहा तो देखो पहली खबर तो ये है कि आज के बाद तुम्हारी बीवी कभी नहीं बोल पाएंगी। हैं ठीक है, अब बैड न्यूज भी बता दीजिए। मतलब ये गुड न्यूज थी, पत्नी सुन रही है, घर चल तू। भाई जुबान नहीं चलेगी, हाथ तो चलेंगे, डंडा तो चलेगा।

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई आपको कुछ एक सूचनाएं और साझा करें आपके साथ. एक तो भाई आप सुन चुके हैं, फिर याद दिला रहे हैं कि सुनील ग्रोवर, नॉट सुनील गावस्कर, सुनील ग्रोवर बहुत बड़ा नाम है भाई. आजकल हास्य के क्षेत्र में हंसा हंसा के पेट दुखाते हैं डॉक्टर गुलाटी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी और ज्यादा मशहूर हो गए और यहाँ आकर और मशहूर होंगे भाई. ये हरियाणा का कलाकार है और कपिल शर्मा इस शो में छाया हुआ है, तो वो लाइव परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th of October and Leicester at Mattioli Arena on Saturday 31st of October. Tickets at AXS, Eventbrite and Ticketmaster. Exclusive radio partner, of course, Laika Radio Network. और भाई एक और ये कि Laika Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Raga Sun. Details at laikaradio.com. और इसके अलावा भाई एक और सूचना, और वो ये है कि कौन सी है, जियो हॉटस्टार के बारे में. जियो हॉटस्टार, बिग बॉस इज बैक, द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान. द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार देखना ना भूलें. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलोंग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस. तो साहब जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी, ये भी याद रखिए और इसके कार्यक्रमों का आनंद लुत्फ उठाइए. आज 16 सितंबर को कौन अपना जन्मदिन मना रहा है भाई? फिल्मी सितारों के बारे में तो बाली भाई जो है वो अब क्या कहते हैं जानकारी लेकर आएंगे ही, लेकिन जिनके बारे में वो नहीं बताएंगे हम बताएंगे. एक तो आज पी चिदंबरम, ये नाम सुना आपने? किसी समय भारत के वित्त मंत्री रहे और कंट्रोवर्शियल व्यक्तित्व हैं आज भी. चिदंबरम साहब जो है होम मिनिस्टर भी रहे, तो आज उनका जन्मदिन है. 1945 में जन्मे थे 16 सितंबर को पी चिदंबरम. इसके अलावा एक और नाम है भाई, बहुत बड़ा नाम है. वैसे तो चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी आज पड़ता है, सिरसा में जन्मे थे, भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक समय थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और बहुत ही चर्चित नेता रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये. 1914 में जन्मे थे आज के दिन सिरसा में हरियाणा में. और साहब प्रसून जोशी उत्तराखंड में जन्मे थे, ये भी एक बहुत बड़े गीतकार हैं, स्क्रीन राइटर हैं, एडवर्टाइजिंग कॉपी राइटर, मतलब काफ़ी काम ये लेखन की उसमें क्षेत्र में करते हैं, तो उनका भी जन्मदिन आज है. ये 1971 में जन्मे थे. गौरी प्रधान पुणे में जन्मी थी, ये भी एक एक्ट्रेस हैं और एक भाई संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है. आपको बताऊँ, आपको सुन करके शायद हैरानी नहीं होगी क्योंकि उनके नाम पर बहुत सारे अवार्ड हैं और बहुत सारी प्रतिष्ठा जुड़ी है. नाम है उनका M.S. सुबुलक्ष्मी. सुना कभी? M.S. सुबुलक्ष्मी गायिका रही हैं, भारत की बड़ी जानी मानी, साउथ की हैं, कर्नाटक से, लेकिन साहब जन्म इनका मदुरई में हुआ था और इन्होंने संगीत को कहां से कहां पहुंचाया. ऐसी गायिका शास्त्रीय संगीत के लिए तो प्रतिष्ठित थी ही, इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले भारत सरकार की ओर से. सबसे बड़ा पुरस्कार भी इनके नाम है, भारत रत्न वाला. और इसके अलावा इन्होंने पहली बार भारतीय संगीत को इंटरनेशनल स्तर पर स्थापित किया जबकि यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में इनका गीत गवाया गया. M.S. सुबुलक्ष्मी भाई आज दुनिया में होती तो सोच लीजिए कौन सा जन्मदिन, 90वां जन्मदिन मना रही होती, नहीं 110वां जन्मदिन मना रही होती, क्योंकि 1916 में जन्मी थी और आज 2026 में उनका 110वां जन्मदिन होता. आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.
0: ये है लाइका रेडियो.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

0: Podcast are brought to you by Southall Travel.
1: और साउथ ऑल ट्रेवल का पैगाम आपके नाम भाई. साउथ ऑल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कॉम्पिटेटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई. नाउ कॉन्टेक्ट साउथ ऑल ट्रेवल टुडे ऑन 02085748410. दुबई की यात्रा के लिए एक ही नाम, साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड. हॉलीडे ब्रेक.

0: Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 7:30 PM on Colours. And watch it anytime on Jio Hotstar.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं. आपका मिलना और हमसे मिलना, आप किसको नसीब होते हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगता है. आपको कैसा लगता है?

0: Visit ragasun.com. Location, design, management, or catering. Ragasun.
1: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time. Legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
3: Leica Radio.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: मनोरंजन विद रवि शर्मा
6: और बहनों भाइयों कार्यक्रम को समेटते हुए पवन धनोरी लिखते हैं कि जिंदगी में जो लाता है स्वाद का जायका उसका नाम है रेडियो लाइका क्या बात है भाई बहुत बढ़िया थैंक यू और हमारे देशराज साहब कहते हैं एक बच्चे से पूछा बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है जवाब मिला समंदर जितना सिलेबस है नदी जितना पढ़ पाते हैं बाल्टी जितना याद होता है गिलास भर लिख पाते हैं चुल्लू भर नंबर आते हैं और उसी में डूब के मर जाते हैं चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर पर अब नहीं रुकना होगा बाली भाई का इंतजार कीजिए रवि शर्मा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए हैव ए सुपर्ब डे बाय बाय

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आपने जो गाना अभी सुना, म्यूजिक था नौशाद जी का. लेकिन हम आज नौशाद जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खुमार बाराबंकवी. बाराबंकवी उनका नाम इसलिए क्योंकि ही वॉज बोर्न इन बाराबंक इन उत्तर प्रदेश. 15th of September 1919 से लेकर 19th February 1909 तक. एंड उन्होंने खुमार इसलिए रखा क्योंकि देर इज एन अरेबिक रूट कॉल्ड खुम विच मीन्स अ जार ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मतलब के वाइन, यू नो. एंड इनके गाने सुनकर खुमार आ जाता है, इसलिए खुमार बाराबंकवी. द उर्दू पोएट, हिंदी फिल्मी लिरिसिस्ट, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से. अब बाराबंकी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक पोएटिक एनवायरनमेंट था इन हिज फैमिली ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. इनके पिताजी थे डॉक्टर गुलाम हैदर एंड ही रोट सलाम्स एंड मर्सियाज अंडर पेन नेम बाहर. उनका पेन नेम था बाहर. वो थे पिताजी कुमार खुमार बाराबंकवी के पिताजी डॉक्टर गुलाम हैदर. एंड इनके अंकल करार बाराबंकवी वॉज अ वेल नोन पोएट एंड हु गाइडेड कुमार इन हिज यंग एज एंड डिड इस्लाह, दैट इज करेक्शंस टू हिज पोएट्री. एंड हिज ब्रदर काजिम हैदर निगर who died in his early age or was also a poet, you know. And Khumar completed his high school from government college and then moved to Lucknow for his intermediate classes, where a romantic turn in his life made him quit education and start writing poetry of love. Ab itna hi bataunga ke wo jo mushaira karte the, inki badi melodious awaaz thi. तो उसमें से बड़े फेमस हो गए क्योंकि अगर कोई पोएट्री करे और सुर भी लगाएं तो क्या बात है. मैंने कितने सारे पोएट्स देखे हैं जिनकी शायरी इतनी खूबसूरत होती है लेकिन इतने बेसुरे होते हैं, लेकिन तो भी कभी कभी काम कर जाती है. इनका तो दोनों का कॉम्बिनेशन था, अ ब्यूटीफुल कॉम्बो बाय विच जिगर मुरादाबादी दी फेमस पोएट, he remained in association with him for a long period, and ghazals and voice made him a favorite in mushairas, like I said. And ek guaranteed success hua karta tha mushaira mein jab unka naam announce hota tha. And he had written some famous songs in Hindi films jaise Shah Jahan, that's 1946. I don't want to take you that far back, lekin Baradari ka gana maine abhi sunaya aapko, 1955 ki film. एक दूसरी फिल्म है साज और आवाज, उसका मैं गीत आपको सुनाऊंगा. और अगर वक्त मिला तो एक केएल साइगल वाला गाना मैं आपको सुना दूंगा, जस्ट टू बी अ लिटिल बिट नॉस्टैल्जिक टुडे. बट आई डोंट वांट यू टू फील टू मच लाइक ये सैंडी शाह का शो है, क्योंकि 4 बजे वो आ रहे हैं ना, इसलिए उनका शो अभी से फील नहीं कराना चाहता हूँ मैं. सो वी आर रिमेम्बरिंग खुमार बाराबंकवी.
0: ये है लाइका रेडियो. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Padden weekdays at 4 p.m. Like Radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
4: 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Threeka, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: It's December. Thand ko bolo, goodbye.
1: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine aur 8 amazing Caribbean islands aapka intezaar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person. Twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956 154 846.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
8: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: To buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11.
0: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place.
2: 11, 11.
0: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
2: Danube 11, 11. Danu Properties.
4: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
4: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
6: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now. Like Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast. Make the call. Dial 999.
8: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में
9: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मैं भी कहूं वाह वाह राम लक्ष्मण जी। जी हां, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड द नेम राम लक्ष्मण। सुरेंद्र कदम और विजय पाटिल दोनों की पार्टनरशिप शुरुआत हुई। थोड़ी देर में आपको मैं उनकी कहानी बताऊंगा, पर जब दोनों की पार्टनरशिप शुरू हुई तो उन लोगों ने नाम रखा राम लक्ष्मण। अभी राम लक्ष्मण में सुरेंद्र कदम और विजय पाटिल। सुरेंद्र कदम डाइड इन 1976 जस्ट आफ्टर वन फिल्म विच वॉज अ मराठी फिल्म पांडु हवालदार, और बहुत हिट रही वो फिल्म। और दूसरी फिल्म साइन करते ही एजेंट विनोद, हिंदी फिल्म जो थी। सुरेंद्र कदम, दैट इज द राम पार्ट ऑफ राम लक्ष्मण, ही पास्ड अवे इन 1976। विजय पाटिल कंटिन्यूड विद द नेम राम लक्ष्मण अंटिल ही डाइड। वाओ, गॉड ब्लेस हिम फॉर दैट। नाउ देयर फर्स्ट फिल्म टुगेदर वाज अ मराठी फिल्म। फिल्म मेकर दादा कोंड के, इन्होंने उनको देखा, विजय पाटिल को। तब विजय पाटिल हैड स्टार्टेड इनिशियली एज अ सिंगर एंड ही स्टार्टेड हिज ओन ऑर्केस्ट्रा नेम्ड अमर विजय। अमर उनका बेटा, तो अमर विजय के नाम से उनका ऑर्केस्ट्रा चलता था। एंड द ऑर्केस्ट्रा गॉट द अटेंशन ऑफ द कॉमेडियन एंड फिल्म मेकर दादा कोंड के, और उन्होंने विजय को ऑफर की एक फिल्म। और विजय ने कहा, मेरा दोस्त है सुरेंद्र, हम दोनों पार्टनरशिप में ये करेंगे। और पांडु हवालदार 1975 की फिल्म में, मराठी फिल्म में उनको संगीत दिया गया एंड उनका नाम रखा गया राम लक्ष्मण। दैट वाज बाय दादा कोंड के। जैसे मैंने कहा, सुरेंद्र द राम पार्ट, ही डाइड इन 1976 एंड विजय, दैट इज लक्ष्मण, कैरीड ऑन एज राम लक्ष्मण। फिर फिल्म एजेंट विनोद जो उन्होंने साइन की थी वो उन्होंने कंप्लीट की। उसके बाद तो फिल्मों के बाद फिल्म। मतलब मेरी जो ऑब्जर्वेशन है अबाउट दिस ग्रेट मैन विजय पाटिल, जिन्होंने राम लक्ष्मण के नाम पे म्यूजिक किया, डिस्पाइट नॉट बीइंग अमंग द मोस्ट प्रोलिफिक कंपोजर्स, राम लक्ष्मण का जो म्यूजिक था, इट हैड अ क्वालिटी दैट मेड इट स्टैंड आउट। ये जो गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सब गानों में आप म्यूजिकल जो ट्रीटमेंट है और मेलोडी है, आप सुनिएगा, ऐसी मेलोडीज के किसी भी सिंगर को ले लो, ये गाना हिट होगा ही होगा। तो इन्होंने जब सिंगर जैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को, हरिहरन जी को, इन सब से गवाया, अमित कुमार को भी गवाया, लता मंगेशकर वाज वेरी वेरी, यू कैन से वेरी मच कॉमन इन एवरी सॉन्ग ऑफ हिज, वेयर एवर देयर इज अ लेडी सिंगर। और कुछ गाने ऑफ कोर्स, 100 डेज एक फिल्म थी जिसमें आशा भोसले जी को भी गवाया था इन्होंने। लेकिन मेरा कहना यह है कि इनकी जो म्यूजिक थी, हिज एबिलिटी टू ब्लेंड क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस विद कंटेम्पररी साउंड्स मेड हिज म्यूजिक बोथ एक्सेसिबल एंड सोफिस्टिकेटेड। ही वाज अ कंपोजर हु कुड मेक यू हम अलोंग, टैप योर फीट एंड एट टाइम्स ब्रिंग अ टीयर टू योर आई विद द शीयर ब्यूटी ऑफ हिज कंपोजिशंस। सच में इतना दिल से बोल रहा हूँ, जब भी गाने सुनता हूँ मैं कहता हूँ, इनको इतना तवज्जो क्यों नहीं दी गई थी, इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी गई थी। अगर इनको कुछ बढ़ावा मिलता तो इन्होंने इंडस्ट्री में सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को पीछे रख देना था, पीछे छोड़ देना था। इन्होंने कैसी कैसी फिल्में की, मैंने प्यार किया, जहाँ पे अवार्ड भी मिला था, आई मीन सो मैनी अवार्ड्स, 13 नॉमिनेशंस में से 7 अवार्ड्स मिले थे मैंने फिल्म को, एंड हम आपके हैं कौन को, दिस इज द फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड ही गॉट अ नॉमिनेशन एक्चुअली फॉर दैट, एंड देन पुलिस पब्लिक, फिर फिल्में हैं एजेंट विनोद, हम साथ साथ हैं, सांच को आंच नहीं, हमसे बढ़कर कौन उस्तादी उस्ताद से सुन सजना दर्दे दिल हमसे है जमान आई कुड गो ऑन एंड ऑन लेकिन ही वॉज एक्टिव फ्रॉम 1975 टू 2021 फॉर 46 years. Almost 75 films in Hindi, Marathi and Bhojpuri. 75 films. Unme se I know a handful of about 35 of them, which were the Hindi films. So we are paying homage to Vijay Patil, who was born on 16 September 1942 in Nagpur and he died at the age of 78 on 22nd May 2021 in Nagpur. It is his 84th birth anniversary. Main hoon Bali Brahmbhatt, aapki khidmat mein, on Like a Gold with Gold Afternoons, which is sponsored by Jaimin Foods.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can fetch you up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit Ambala.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरी day grand
7: I happen to happy wali feeling like Diwali
8: It's back and it's bigger.
3: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
8: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
3: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
8: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
9: Birmingham, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Leica Radio.
10: Yeah, hello!
2: Listen our little Garba stars, taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday, 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 thi 10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call Beaches 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
1: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Laika Radio, Greater London. Miss your favorite show on Laika Radio Midlands? You can now listen back at laikaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Vadon, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to laikaradio.com and the Laika Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Laika Radio Midlands when you want. 3 days to go. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Laika Radio Network. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Danyu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
1: Dubai is the place.
0: 11. Call the Danyu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
2: Danyu 11-11. Danyu Properties. Danyu 11-11.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉरपोरेट इवेंट्स लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट lagasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या कैटरिंग लागसन
4: भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
6: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
7: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. This is Leica Radio across the Midlands.

Our artist of the week, that is Shashi Kapoor. कितना प्यारा गाना, सत्यम शिवम सुंदरम, मुकेश जी ने गाया फॉर ऑफ कोर्स हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शशि कपूर, जिसमें जीनत अमान थी, एंड म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड लिरिक्स बाय आनंद बख्शी. होप यू एंजॉयड इट. अब मेरे पास एक खुशखबरी है आपके लिए. द 20th season of Big Boss is back. Hosted by Salman Khan, the show airs every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, Jio Hotstar is streaming every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV. And what I have got to say again,

0: Isha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय
0: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस खूबसूरत बीचेस सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846
3: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली
0: It's back and it's bigger.
4: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
0: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
4: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
0: Exclusive charity partner, Go Dharmic.

0: brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Time to get naughty and nostalgic as Radio Wally takes you through the noughties.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: It's back and it's bigger.
3: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
1: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
3: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
1: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
6: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ It. Create wealth with a small investment every month. The new Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
3: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
7: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
0: Remembering and reminiscing those nostalgically noughties with Radio Wally.

0: Leica Radio.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 773 633 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
6: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. For unka phone milaye 0208839880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. Ragasan.
7: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions. Especially on country roads, where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: From Dudley to Handworth Wood, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
8: Leica Radio.
0: Time for another Leica Love Classic.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
2: London, get ready for an unforgettable night.
3: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
2: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
3: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
2: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
3: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
2: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
0: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner Leica Radio Greater London. Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. From Hellsowen to Harborne. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. From Great Bar to Perry Bar. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. From Yardley to Walsall. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
4: Yeah, Leica, go!

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले जिंदगी से भाग कर आया हूं
1: बारिश हो रही है ये बारिश ना होती तू भी ना आती